सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

शंख कपालित भूषित करौ मालास्ति माला धरौ दिव्यौ द्वारवती श्मशान निलेहरिणौ नागारी गोवाहनौ धीत्र छौकलि दक्षेक्ष मथनौ मेघाद्रि राजा प्रभौ पापम मे हरतौ सदा हरिहरौ श्री शैलजा बल।

ना आय कि आय न को जाऊना। ये कलियुग को प्राणी हो आय कि आय न को जाऊना, आय कि आय न को जाऊना, हो हे आय कि आय न को जाऊना। भगवान खोजने हो माने शास्त्र पर्दा हुँदैन, भगवान खोजने हो भने शास्त्र पर्दा हुँदैन।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz बाट म बदे प्रसाद सागकोट आज विक्रम सम्बत 2083 सा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन् 2026 मे 15 तारीख ज्येष्ठ 1 गते शुक्रबार त्रयोदशी 2:35 पल मात्र अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

परिचयन राजा नौशकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाय नहीं परे का घरे मन राखुन सवले दुर्योधन समान कर्णय समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित का

सीताजी कल भेटी फर्काउला र फेर हमका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पसौला तिम्रो आहार भई। यति बात सुनि भन्दा चिन्ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्कि जाऊ नै भने म बलले पक्रेर दरा घसी। भोकी मैलिन्दा उरिन त कपाल खोरे कि केसाबुसाई लट्टा मात्र परे कि खाली भूमिमा रुँदै बसे कि तसाई राम चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता कहाँ झन्नी मतलब ली खड़ी भैनी पकड़ रहा गई महा। एक दिन ही हनुमान म चित्रकूट में राम का नजीक में थिया